गुरु अर्जुन विघ्न नके नाशक विघ्न नके नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: जरण मरण की चिंता नाख
1: चिंता तो निभा दें
0: दूजा जीवन की आस मिटाव
1: दूजे हो जीवन की जी आसा छनी

पंथ प्रकाश विच लिखे है। उन्होंने बच्चे लिखे ने बड़े प्यारे। नादर शाह ने एक गल पूछी, नादर कहया खानू आहे, खानू जकरिया खानू, नादर कहया खानू आहे हमको लूटन हार बताहे। कहन लगे जिन्हें मैनू भी लुट लिया ना, ये मैनू दस कौन ने लोगे। मैं इन्होंने बारे कबूत ने सुनिया, जिन लुट खायो हमरो राहू मुल्क उसे की उड़ा देऊ सुहाहे। कहन लगे जकरिया खां एक गल सच करके जानी, मैनू एक बारी दस दे लोग कौन ने, इन्हों दे मुल्क दी मैं सुहा भी उड़ा देंगा। तेरी दिल्ली विच तां कुछ छड भी आया मैं, तेरे लाहौर विच तां मैं कुछ छड भी आया, लेकिन जेड़ा इन्हां दा देश है ना, जेड़े नादर शाह नूं भी लुट सकदे ने, जेड़ा इन्हां दा देश है, एक बारी यकीन करके जानी मैं उहदी सुहा भी उड़ा देंगा, उहदी सुहा भी पले नहीं पैण देंगा, अग ला देंगा इन्हां लोकां नूं। नादर शाह नूं भी घेरन वाले लोग नहीं हो सकदे। इह पंथ प्रकाश दे बोल ने, मैं फिर बेनती करां, तब खानू ने ऐस बखानी। हुण जकरिया खां जेड़ा ना वह नादर शाह नूं दसदा सिखां बारे च, तब खानू ने ऐस बखानी मुल्क आहे की काहे निशानी। कहन लगे इन्हां दा मुल्क की कहड़ी निशानी तू भालदा, कोई निशानी नहीं इन्हां दी, फिर भी कोई ना कोई अता पता तो होएगा। वह दसदा हुण जकरिया खां दसदा, नाम सिंह, अज तो असी जात लिखाउणी चंगा माण समझने, गुरु का सिंह लगवाना नहीं चंगा समझते। नाम सिंह बन मजहब खालसा, इन्हों का मजहब जेड़ा वो खालसा है। नाम सिंह बन मजहब खालसा त्याग देत सब जगत लालसा। कमर जांगिया कशहरी नूं कहिंदा, कमर जांगिया सिर पर पटका पूरी गिलती बाना जटका। कहन लगे ए पर त्रिया ताई मात बखाने चोरी यारी निंद ना ठाने। कहन लगे पराई इस्त्री नू माता कहिंदे ने, इत्थे बस नहीं, ए चोरी निंदा बिल्कुल भी अपने जीवन विच नहीं करदे, ए ऊंचे जीवन दे किरदार दे मालक ने। सौ सौ कोस भजे ही जय है, उदो घोड़िया ते सफर करना सौ को बहुत महीना रखा सी। याद रखो जो मैं बेनती करा, घोड़िया ते जिन्हें सफर किया होगा उन्होंने पता होगा घोड़सवारी जेड़े करते हैं बखियां चढ़ जांदियां ने, क्योंकि अनजाण बंदा घोड़सवारी नहीं कर सकता। सौ को इको बारी सफर करना, एक बारी तुर के सौ को ते रुकना। मुगलों विचों केवल एक बाबर होया, मुगलों विचों केवल एक बाबर होया, नहीं तो बहुती बारी, या फिर अहमद शाह अबदाली ने एक बारी 35 घंटे सफर किया सी कठिया, वो अगे जाके तुहाडे नाल जिक्र करांगा मैं समझाया। नहीं आम करके इना सफर नहीं सी कोई कर सकता। सौ सौ कोस भगे ही जह है घोड़न को भी मास खले हैं, खड़े सोवे और चलते खाहे। ये खड़े खड़े सौ जाते ने घोड़िया दी काठियां ते ही, और चलते चलते खाते ने। खड़े सोवे और चलते खाहे, बैठे नाही किसे गराहे। कहन लगे किसे पिंड विच भी नहीं बैठते, तू की इन्हां दा मुल्क हो जाएगा। हाड़ ना दिन पर पीवे पानी, श्याले अगर ना रखे निशानी। कहन लगे हाड़ का महीना होवे, इन्हां नूं सारी दिहाड़ी पानी दी कबूत ना ना मिले, फिर भी पता नहीं कदे आसरे जकारे लाउंदे ने, इह कदे नहीं खत्म हुंदे। हाड़ ना दिन पर पीवे पानी, स्याले अगन ना रखे निशानी। स्याल का महीना होवे अग सेकनी तो एक पासे, ए अग दी निशानी भी कोल नहीं रखते, अग दी तस्वीर भी कोल नहीं रखते। पता नहीं रब जाने इन्हां कोल कपड़े भी नहीं होंदे, घोड़ियां दी काठियां ती चढ़दी कला च विचरदे रहिंदे ने। स्याले अगन ना रखे निशानी, लूण किरत का स्वाद ना जाने। अज ते रब दी कृपा सानूं किन्ने पदार्थ मिलते ने, उह सिखा शुक्र करिया कर मालक दा, उन्हां वल देखो जिन्हां सिक्खी हंडाई है। लूण किरत का स्वाद ना जाने, हम दुख देवे वह सुख माने। कहन लगे ते कदे चंगा प्रशादा भी नहीं छकदे, मैं बहुती बारी इन्हां दरख्तां दे पत्ते घुट के पींदे ही वेख्या, इन्हां बेचारे नूं पता नहीं कदा आसरा है। जकरिया खां ने जदों इतनी गल कही, भावें उन्हें इन्हां दा किरदार दस्सिया, भावें ईरखावासी दस्सिया, पर खुशबो ते खुशबो है।

तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलों विच सुभायमान सतसंगी प्यारियो करो कृपा असीसा बख्शो। अदब सत्कार नाल गुरु फतेह जी सांझ करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछलेरे दिनां विच आपां विचार दी सांझ पाई सी जस पत राय दा कतल।

तेरे जीवन विच्चों बाकी गुरु वालियां निशानियां लभदियां ने, जिहो जिहा तेरा सतगुरु है ओह जिहा तेरे जीवन विच्चों कुछ अंश लभदे ने। एक बारी मैं फिर बेनती करा, सिख किरदार पक्षों ते सिख हथियार पक्षों दोनों पक्षों तो मजबूत सी। बाकी लोगों के कोल बेचारे को हथियार चलाउण की समर्था नहीं सी, जे चला भी लेंदे सन ता उन्हां कोलों किरदार पक्षों हिफाजत नहीं सी हुंदी। सिख दोने पक्षों मजबूत सी। सतगुरु जी ने कृपा कीती, वह 2200 लड़कियां उन्होंने मोड़ के उन्होंने घर पहुंचाईयां। हालांकि कई थावां दे उत्ते मजबूरी भी बनी, कई थावां उत्ते मजबूरी भी बनी। उन्होंने लोगों ने अपनिया ही धियां भैणां लई दरवाजे बंद कर ले सन भी तुसीं पठाणा दे नाल जां अहमद शाह अबदाली दीआं फौजां कोल रह के आयो ते साडे घरां विच हुण तुहाडी कोई थां नहीं है। इन्हां गुरु के प्यारिया ने जबरदस्ती उन्होंने घर उन्हां नूं बचन आख्या भी जे इह धियां भैणां तरसदियां होईआं ओह जालम चुक के लै गया ते अज अपने मापिया की आस तक के वापस घरे मुड़िया ने। बाकी भावे दरवाजे बंद हो जाण पर धियां भैणां लई मापिया का दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए। ए आप नहीं गईआं, इन्हां नूं जालम लैके गया सी। जे वह बच्चियां आप गई होंदियां ते शायद मैं भी ना लैण जांदा। वक्त गुजरिया, अहमद शाह अबदाली दे मन विच एक गल पक्की खटक के बन गई। उन्हें एक गल का पक्का फैसला कर लिया भई जे मैं मराठियां की ताकत नाल लड़के उन्होंने बर्बाद कर चुका है तो इको एक सिख ने हुण मेरे रस्ते विच, असल विच दोवें ताकत रह गई सन हुण, एक अहमद शाह अबदाली ते दूजे ए, ते किन्ना चंगा होवे मैं इस वारी आके इन्हां नूं जदों हुण मैं आवां ते इस वारी आके मैं पहले सिखां नूं बर्बाद करा, बाकी होर कोई कम नहीं करना। अहमद शाह अबदाली पंजवें हमले की तैयारी विच है। अचानक उन्हां दिनां दे विच श्री अकाल तख्त साहब दे उत्ते एक गुरमता होया, एक सरबत खालसा होया 1761 विच ही, और उस गुरमते विच 27 अक्तूबर 1761 नूं यह गुरमता होया। उदे विच एक फैसला किया गया भी बाकी काम सारे हो गए लेकिन हुण सब तो वड्डा काम यह है भी जेडे सिक्खी दे विच गदार लोग ने पहले उन्हां नूं सादिया जाए। मैं किसी ते कोई टिप्पणी नहीं करदा पर लेकिन स्पष्ट इतिहास लुकाउणा भी नहीं चाहुंदा। अपने जिहड़ी हुण खाड़कूबाद दी लहर शुरू होई सी, इह बर्बाद क्यों होई? बर्बाद इसे लिए होई क्योंकि असी वेख्या ही नहीं भी गोली किहदे वल साधन लगे, असी वेख्या ही नहीं। उस वेले दे सिखां तो इतिहास तो अगर जांच सिखी हुंदी ना ते खिमा करियो जे अज साडे नाल ओह कुछ ना हुंदा जो कुछ होया है। अगे जाके मैं तुहाडे नाल सारी इतिहास दी सांझ पावांगा, तुसीं खुद देखियो भी सिख किहो जे सन। उस वेले उन्हें फैसला किया भी गदारा नूं साधिए, इन्हां नूं सोधिए। सब तो बड़े दो तीन गदार सन, एक रामा रंधावा जदों छोटा घल्लू घारा होया ए पापी ने भी साथ दिता उन्हां दा 1746 विच जदों छोटा घल्लू घारा होया, इन्हें बड़ा सताया। दूजी बारी हुण एक अकल दास ते एक हर भगत निरंजनिया, ए दोवें जने भाई हंधाल दे परिवार विचों ने, इन्हां पापियां ने भी बड़े पाप कमाए ने। सब तो पहला जिहड़ा हिट लिस्ट विच उत्ते ना आया वह अकल दास दा आया, सी जंडियाले दा। जंडियाला अमृतसर साहब तो जलंधर तो जांदे आ 20 किलोमीटर पहला है रोड दे उत्ते, कदे वक्त मिलिया जरूर जाके आयो। ते उस जंडियाले दी धरती दे उत्ते आके गुरु के सिखां ने फैसला करके ते उत्थे आके उन्हूं घेरा पा लिया। हुण इत्थे आके घेरा पाया, अकल दास ते हई टाउट सी, उत्ते हई गदार सी, उन्हूं की किस गल दा वास्ता सी। उन्हें उस वेले सुनेहा भेजिया, उस वेले अहमद शाह अबदाली अपनी फौज

गुरु सवारियों जी, असीसा बख्शो, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पिछले समय तो सिख इतिहास दे विचारां दस तुहाडे नाल सांझियां करदा रहा सी। अज आप कोशिश करनी है गुरु साहब कृपा कर 1800 तक आप विचार कर सकी। मिसलां की गल दस तुहाडे नाल सांझी कर रहा सी। मिसलां दे जिन्ने भी मुखिए सन वह बुजुर्ग हो गए। पहली गल यह हुई भी वह बुजुर्ग होने के नाते थोड़े कमजोर हो गए, वह गल ना रह सकी। दूजी गल, जेड़े लोग किसी वेले अमदाली की शानी भरते सन या मुगला की शानी भरते सन या वक्त के हाकमां की खुशामद करते सन, उहो लोग इस मिसलां दे सरदारां कोल आ गए। हुण खुशामद करना उहनां दे खून विच सी, उहनां ने इन्हां सरदारां दी भी खुशामद करनी शुरू कर दित्ती। ऐसा भाणा वरतिया इह सरदार जिहड़े कल किसे कोलों नहीं सन हारदे उह जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। जिहड़े तलवारां नाल तीरां नाल कदे ना हारे उह जबान दे मिठियां कोलों हारन लग पए। खुशामद है इहो जिही जिहड़ी मनुख दे अंदरले हंकार नूं जगा के हंकार दा रोगी होमे दा रोगी बना दिंदी है। अनेकां तरह के इहो जे लोगां ने। दूजी गल, भरा मारू जंग उवें तुहाडे नाल पिछले दिनां च सांझी कर बैठा होया, एक दूजे तो एक दूजे दीआं मिसलां दे उत्ते चढ़ के जाणा इह उहनां ने किरदार बना लिया। इसे दे दरमियान जदों इस तरह के हालात बन गए ते इना विच्चों जिहड़े बाकी कुछ एक चंगे सरदार सन उना विच्चों कुछ चढ़ाई भी कर गए, अगलिया मिसलां दे जिहड़े होर सन जथेदार होर बन गए। उहदे नाल की होया भी जिहड़ी गल अगे सी ना उह ना रही। इत्थों तक मैं बेनती करा, मेरी जबान साथ नहीं दिंदी मैं किवें कहां, पर लेकिन अपना इतिहास है। दो पक्ष आपां नूं लुकाउणे नहीं चाहीदे। यह माड़ा पक्ष है, वह लोग सन जिहड़े वह नशियां दे आदी हो गए, भंग पीण लग पए, शराबां पीण लग पए,

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनू चंगियां निहारियां खवाईयां चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लै आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके लै आवो
0: सोने दे सोहने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ये तैयार करके लै आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े दे भी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे तो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहने छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुनजनी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया कि गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुर सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी डरते, ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्ह के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम,
0: इन्ह ने कई बारी अपने नाल जंग किया है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने, यह सारे इलाके कई बारी इन्ह ने उजाड़ दिते हैं।
1: मुखी सेना के मरे हमारे आद केसरी चंद जुझारे,
0: ये केसरी चंद तो आद लैके होर जिन्हें योधे सन सारे साडे जरनैल राजे महाराजे, ये इन्ह ने बहुत सारे जंग दे विच

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने?
0: हिंदुआ ते मुसलमाना की गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने?
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा?
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जा ही है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा?
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे?
0: सारे दुश्मनों नू मार करके किस प्रकार?
1: राज पाए किम कहिए तैसे?
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए और राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जिहा है, ये दसो मेरे मन का शंका भाई इन्ने बंदियां दे उत्ते थोड़ा जा खालसा किवें राज करेगा?
1: वधे तेज किम लहे धरने?
0: तेज इन्ना किवें वधूगा इन्हां दा, किवें धरती सारी तुसीं कहिंदे सारी धरती ते राज करना इन्होंने?
1: ठहरे राज कौन कर करने?
0: इन्हां दा राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा?
1: बहुतन की किरत अलप करें किम?
0: ए बहुतियां दी किरत, बहुते बंदियां दी किरत भाव जिहड़ा एक लख बंदे ने कम करना है, ए हजार बंदा किवें कर सकता है? मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है?
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम?
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है?
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज?
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू?
0: सारे दुश्मनों के उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा?
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा?
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा?
1: हान लाभ जाने इस बेरा?
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा, किस तरह राज करेगा?
1: वरतें वरतारा जग जथा?
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आउण वाले समय च।
1: श्रीमुख सुंदर ती कह तथा?
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहणे वचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए?
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए?
0: ए तां साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असी चाहुंदे आ उसे तरह दी हवा चल पेगी, अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाए गो खर्च लेंगो लाल?
0: सो इस तरीके दे नाल कहिंदे खाणगे खर्चणगे लए गो लाल। हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने, खाए गो दो खा खर्च खखा ते ले गो तो लल्ला ते लाल। इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी, सरकै गो युद्ध माहे करै गो निहाल। वो सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा, जंग जितेगा, अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल?
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार?
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार, जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना, खा लक्ष्मी तो लल्ला, खाल ਫਿਰ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ

0: एक खकार अखर खखा, एक लकार लीजिए कहने लल्ला, एक सकार तो ससा, इउं खालसा अखर बनया है।
1: तीनों को पद खालसा किनो अर्थ उचार,
0: तिना का पद है खालसा। तो इस तरह इन्हों का असि महाराज सच्चे पातशाह कहने अर्थ जिहड़ा है बना के तुहानू सुना दिता है कि खा ल ते सा, ये तीन अखरां दे विच इन्ना कुछ छुपया होया कि जिहड़ा कोई बंदा समझ नहीं सकता। जिवें कहा सी खन जोगी लंग भोग और ग्रहणे मांझ संग्रहणे मांझ, इहदा इह अखर विच किन्नी डूंघाई है। जिहड़ा खन जोगी कहिंदे खा खालसा जोगी रूप होवेगा, ते खालसा जिहड़ा होवेगा लल्ले तों कहिंदे लंग भोग भाव। खालसा दो चीजां हो गईयां, एक जोग होवेगा भोग होवेगा खालसे कोल, और संग्रहणे मांझ इकट्ठा करेगा खालसा नाम। इस तरह ही सतगुरु महाराज कहिंदे ने इन्हां तुकां दे विच पद खालसा दे अखर अखर ते अर्थ कीते जिहड़े ने ना उह इस ढंग दे नाल कीते हन। तो जिवें कहिंदे ने जो है खन जोगी, तो जोगी हो गया लंग भोग मैं जां संग्रहणे मांझ, तां इस तरह कहिंदे ने खालसा जोग ते भोग दोहां नूं मिल के विचरेगा। ते खंग दा अर्थ हुंदा नभ, नभ तो मुराद हुंदा चिदाकाश। लंग भोग दा अर्थ हुंदा लंपड़ तो पाव, ये संसार दे जिहड़े भोग दे अर्थ इस प्रकार कहना। संग्रहण दा अर्थ है इकट्ठ करना मेल करना। इस तरीके नाल ये सारियां चीजां खालसे दे तीन अखरां विच ही ने। महाराज कहिंदे जे कोई इन्हां नूं विचार करे खा ते ला ते सा, ये तिन्नां विचों ही सारा कुछ ही निकल आउंदा है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने खालस अखर नूं समझना सारयां दे वस दी गल नहीं, पर असीं तुहानूं कुछ अर्थे दे करके दसे हन।
1: चौपाई इमकै तूसन भए गुसाई,
0: इउं कह के महाराज सच्चे पातशाह जी फेर नहीं बोले, फिर चुप हो गए।
1: देखत सब दिस दृष्ट चलाए,
0: देखदिया सारे पासे महाराज ने अपनी दृष्टि संगत ते चलाई है।
1: लको सुभाए खालसे गुरु को,
0: कहने सुभाव की कहने जो खालसा है ये गुरु रूप है, अते गुरु खालसा है।

ब्राह्मण होए महाराज वेले उन्होंने फिर महाराज की सिक्खी ग्रहण की शुरू तो लैके। इस तरह महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे जे कोई ब्राह्मण चरण पहल हुण लै ले, केस भी रख ले, दाड़ा भी रख लिया, उन्हें चरण पहलिया है, फिर जे कोई गुरु घर नाल प्रेमी है उहदे नाल आपां फिर वरत सकदे हां इस ढंग दे नाल कि भी ये सिख है।